0: वे मरा
1: मैं कवरा एच दे हूँ
0: आता हुआ न तीने वो या तने
1: मैं कहा रा तो ता तो चुकू
0: क्यों रो माय डार्लिंग।